0: की याद आई। ईश्वर का दर्शन होने पर ही उनका अनुग्रह भी प्राप्त हुआ।
1: ఈ భగవంతుని ముందుగానే కొంతవరకు నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించుంటే ఈ బాధలే ఉండవు కదా.
2: అర్జున,
1: నీవి బంధనకు మరీ గురి కావద్దు. ఈ అందరి ఎందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకత్వం అనేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకో. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి నీవు కలిగి ఉంటుండు. నీ హృదయ క్షేత్రంలో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఉండ చెట్టును పెంచుకోవద్దు. భగవద్ అనుగ్రహం అనేటువంటి పండ్ల చెట్టును పెంచుకో.
0: యది పహలే హీ కుచ్ ప్రయత్న కర్కే ఈశ్వర్ కా అనుగ్రహ ప్రాప్త్ కియా హోతా तो ये सब कष्ट हुए ही न होते। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इन बंधनों में मत पड़ो। सभी में विद्यमान एकता रूपी आत्म तत्व से अवगत हो, अपने में व्यवसायात्मक बुद्धि को विकसित करो, अपने हृदय क्षेत्र में कंटीले पेड़ को मत बढ़ने दो, ईश्वर के अनुग्रह रूपी फलदार वृक्ष को बढ़ाओ। उपसंहार। भगवान बाबा ने अपने इस उपदेशात्मक प्रवचन में अनेक प्रतीकों और उदाहरणों के माध्यम से हमें भय से मुक्त होने और सुदर्शन को प्राप्त करने के साधना मार्ग सुझाए हैं। स्वामी स्पष्टतः कहते हैं कि वस्तु जगत के प्रति मोह और अन्य किसी दूसरी वस्तु होने के भ्रम के कारण ही मानव भयभीत हो रहा है, अतः उसे दैहिक एवं मानसिक दृष्टियों को त्याग कर आत्मिक दृष्टि अपनानी चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति को व्यवसायात्मक बुद्धि को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। खेती करने से संबंधित अनेक कार्यों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए स्वामी ने व्यवसायात्मक बुद्धि की विशेषताओं को समझाया है। इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष की घटना के प्रतीकों को स्पष्ट करते हुए भगवान बाबा ने कहा कि व्यक्ति को इस कथा से सीख लेते हुए स्वयं से अहंकार, ममत्व और देहाभिमान को दूर करना चाहिए। स्वामी का उपदेश है कि सर्वत्र व्याप्त एकमात्र ईश्वरीय तत्व से अवगत होने पर सारे भय दूर हो जाएंगे और हम पर वह सुदर्शन दृष्टि प्रसरित होगी। अस्तु।
3: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 11 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।
4: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.

आज मैं जो भी भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो सभी भजन मेरे पूज्य पिता पंडित कुमार गंधर्व द्वारा स्वरबद्ध किए गए हैं। अपनी सेवा

राजस्थान में एक मीराबाई के समकक्ष एक और बहुत महान कवियत्री हुई हैं, संत कवियत्री, जिनका नाम चंद्रसखी रहा है, उनका एक लोक भजन आपके सामने प्रस्तुत।